0: मुख्तार जी, कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं, और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: क्या ख्याल है आपका?
1: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
0: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
1: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
0: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0322656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। तो चले यहां से प्रोग्राम में पहला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में सुनते

0: रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, भजन यात्रा प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-6611, इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। तो चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सुंदर सा भजन होगा पंडित गजेंद्र शर्मा जी की आवाज में।
1: मेरे सत्संग प्रेमी सज्जनों, अगर निश्चिन सुबह और शाम को अगर एक बार भगवान का भजन सुमरण करेगा तो निश्चित रूप से 84 के आवागमन से छूट जाएगा। और इसी भजन में दर्शाया गया है, आइए सुनते हैं।

भी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हरिओम शरण जी की आवाज में, हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन

0: हरिओम शरणजी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार बुधराम की आवाज में एक सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: दया धर्म

भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा हर सुबह की तरह आज सुबह भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर।

रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा का प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में ऑफ प्रदीप के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना
1: धरती
0: और सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

इसकी गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

एक बार फिर से हमारी सभी सुनने वालों को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज रविवार का दिन 4 अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। और आज 4 अक्टूबर जो है धीर दाख है, तो सभी को ही बधाइयां मुबारकबाद पेश किया।

में संगीतों का प्रोग्राम यहां से पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना पेश किया जा रहा है। आज जबकि धीर दाख का दिन है तो ये गाना के साथ पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस शुरुआत किया जा रहा है। किशोर कुमार फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी।

फिल्म हाथी मेरे साथी सोमवार किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई। आज धीर डाख है तो इसलिए ये खास गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म हाथी मेरे साथी उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। चले किशोर कुमार की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। हैप्पी एनिमल्स आप हरी को बस पेश किया जा रहा है। हैप्पी एनिमल्स डे सभी को शुभ दिन आज धीर दाह के मौके पर। किशोर कुमार की आवाज में ये खास गाना पेश किया जा रहा है।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। डीड़ दाख के मौके पर ये खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। चले एक गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, उसके बाद कुछ और पुरानी फिल्में गाने आप सभी के लिए पेश किया जाएगा इस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। धीरे दाख के मौके पर ये गाना।

आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।
1: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। डेढ़ दाख के मौके पर ये तमाम गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्में ये संगीतों का प्रोग्राम में। देखा जाए कुछ मिनट बाकी रह गया है हेडलाइंस न्यूज की ओर जाने के लिए, तो चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है धीर दाह के मौके पर। लता जी की आवाज में।

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दीन दाख के मौके पर। आज जानवर का दिन है तो इसी खास उपलक्ष पर ये गाना आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गई।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden in zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog geen vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Verkeer kan omrijden via de A10 Zuid.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। खासतौर पर हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, आप सभी के ऐप के लिए शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं आज की इस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। वैसे बाहर की ओर देखा जाए धुआं धुआं सा है, मिस्ट का मौसम है, कहीं कहीं कोड भी दिया गया है दिख्त मिस्ट के लिए। तो फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। दोपहर के वक्त, शाम के वक्त में मौसम खूबसूरत, सुहाना मौसम, धूप का मौसम होने वाले हैं। तो आप सभी को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-226-66-11 है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। एक बड़ी ही खूबसूरत गाना होगा।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, सुनने वालों ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं। मोहम्मद रफी एन लता प्रोग्राम में चले ये गाना की ओर। धरती फिल्म का नाम है ये, अलबेली प्यार की राह है गाना जो पेश होगा। एक से एक खूबसूरत नखमे रेडियो SBS की जरिए संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम लाइव फन आउट एट हार्ट फॉर नीदरलैंड फन आउट मिड नीदरलैंड। मोहम्मद रफी एंड लता, धरती फिल्म का नाम 1970 का फिल्म है, 1970 का फिल्म ये अलबेली प्यार की राह है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म धरती, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, ये अलबेली प्यार की राह है। 12 मिनटों ओवर 3:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। सुनने वालों अभी 11 बजे से आप दरियाफ कर सकते हैं सुपर मार्केट को दवा के पास में। 11 बजे से दुकान खोला जाएगी आप सभी के लिए, आज शाम में 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा। सुपर मार्केट को दवा प्रिंस बर्नार्ड लाइन नंबर 54 उत्तरेख शहर के अंदर में है, उत्तरेख जुइलन में। देन हाग शहर के अंदर हमें 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा। सुपर मार्केट को दवा प्रिंस बर्नार्ड लाइन नंबर 54 उत्तरेख शहर के अंदर में है, उत्तरेख जुइलन में। देन हाग शहर के अंदर कमला हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सुनते

0: मैं जाऊं।
1: नाइट इन लंदन फिल्म में का गाना बस भी इसके गए। विश्वजीत का एक्टिंग किया हुआ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। दरहाक शहर की रहने वाली कमला ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए, और वो भी दीर दाख के मौके पर। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन पर हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उसके साथ तरह तरह की खबरें इसी वेबसाइट पर होता है। मौसमी समाचार, आपका दख हॉरोस्कोप और तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है, खबरें आपको दिया जा रहा है। रेडियो SBS.nl वेबसाइट होता है। एक बार फिर से हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी इस वक्त हमारा साथ देते हैं। और खासतौर पर इंग्लैंड में, इंग्लैंड में भी हमारा प्रोग्राम नैला

मेला भी सुनते हैं और हमेशा पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं, रहे ना रहे चाहे हम और तुम। एक बड़ी खूबसूरत गाना है, इंग्लैंड की रहने वाली नैला ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है किशोर एंड लता।

की आवाज में ये गाना पिसकी गए, रहे ना रहे चाहे हम और तुम। इंग्लैंड से नैला नैला ये गाना मांग किया आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते थे। और इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए बस पेश की गई आसरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। टिकट जो है आप जाकर खरीदिए वेबसाइट iStreetTickets.com, उसी वेबसाइट पर अपना टिकट को आप जाकर खरीद सकते हैं। और उसी वेबसाइट पर आप देखेंगे कि कितना ढेर सा टिकट बिक चुका है। उदित नारायण और आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट, बाप और बेटे का कमाल आप देखिए सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई में। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वेबसाइट रागा इवेंट्स वेबसाइट पर आप जाकर हर एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर। उत्तराखंड लेइटसराय गिरधारी स्ट्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ इस वक्त सुनते हैं। और एक गाना मांग किया है महेंद्र कपूर जी की आवाज में, हमारा फिल्म का नाम तुम अगर साथ देने का वादा करो।

दस बजकर प्रोग्राम में 7 मिनट वेटेड हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। परवाई से इश्तेहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामकाज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में हर एक कामकाज किया जा रहा है। आपकी फरमाइश फेरों पर फरमाइश और तमाम खबरें तमाम रिक्लाम जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में इंटरनेट के जरिए आप सुन सकते हैं। अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए हॉलैंडीज के बीच में दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में प्रोविंसी नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटरकार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। चले गाना की ओर सुनने वालों, गाना आज के प्रोग्राम में एक से एक खूबसूरत गाने नख़्मे मांग किया है, तो चले मिलकर सुनते हैं किशोर और लता जी की आवाज में सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की मांगे हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का नाम, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड लता। हेलो गुडमॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीत भरी स्टेशन। इस वक्त पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ओपन हेलो मोई नंबर एड फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

गाना जो पेश की गए किशोर और लता जी की आवाज में, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। और खास तौर पर ये खूबसूरत हसीना वाला गाना आज के प्रोग्राम में मांग करने वाली थी सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी। नलिनी आज की प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है और ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया। शुभ दिन सभी को पेश किया जा रहा है, सभी जो प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, सभी को शुभ दिन। हमेशा अच्छे वीर दाह का दिन है, सभी अच्छी मूड में है। सभी जो तार कर रहे हैं सभी अच्छी मूड में है। उदन शहर से खास तौर पर लैला लक्ष्मण आज की प्रोग्राम में भी एक काफी प्यार भरी गाना को मांग किया है। फिल्म का नाम शोर, मुकेश और लता जी की आवाज में गाना पेश होगा। एक प्यार का नगमा है उदन शहर की रहने वाली लैला लक्ष्मण की मांगी हुई गाना। चले मिलकर सुनते हैं लैला की मांगी हुई गाना।

फिल्म का नाम शोर, मुकेश और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई एक प्यार का नखमा है, एक प्यार का नखमा है गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। उदन शहर से लैला लक्ष्मण ये गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों के लिए। आसरा उम्मीद है लैला लक्ष्मण की मांगी हुई गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स भी अंदर आते हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप पर, और बहुत सी सुनने वालों भी तार कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, शुक्रिया सब। काफी लोग यही कहते हैं लोग ओम dag zo te beginnen met mooie oude nummers. Sabhi ko shukriya, dhanyabad. Ek baar phir se dil se aha so so lobby. Mauritius ki aur hum aapko le chalte hain kafi dino ke baad. Dushan Jingre program mein bhi hissa le rahe hain aur Dushan Jingre एक खास गाना मांग किया है फिल्म पगला कहीं का। मोहम्मद रफी की आवाज में चले मिलकर गाना को सुनते हैं। मॉरिशियस से दुष्यंत जिंगरी ये गाना मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए।

मॉरिशस देश से खासतौर पर दुशन जिंगरे ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। आसरों मीठे गाना सुनकर और काफी पसंद किया है दुशन, आपको भी शुभ दिन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा इसी तरह से फॉलो करते ही रहना। मॉरिशस में हर एक को खबर कीजिए। काफी सुनने वालों बस गाना मांग किया है, तो चले अब की बार तुरंत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। और गाना जो पेश होगा प्रेम पुजारी फिल्म का गाना, 1970 का फिल्म किशोर कुमार द मैन विद एफरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में गाना आप सुनेंगे। और गाना को मांग करने वाली है दो दरख्त शहर की रहने वाली मीरा। मीरा अपने सभी बहनों के लिए ये गाना मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में, प्रेम पुजारी फिल्म का नाम।

0: telefoonnummer is 030-262-6611. इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर आप तार कर सकते हैं स्टूडियो की ओर, और इसी तार की नंबर पर भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम इस वक्त उत्रेख लाइट्स राइन में सुनते हैं राजेश उदित भी जोर तोर से रेडियो SBS का प्रोग्राम से मजा ही मजा लेते हैं, और एक गाना मांग किया है माइटी मुकेश की आवाज में आप सभी सुनने वालों के लिए। माइटी मुकेश की आवाज में उत्रेख लाइट्स रैंक का रहने वाला राजेश उदित का मांगी हुई गाना। क्या गाना मांग किया है राजेश ने, गोरा गोरा मुखड़ा तूने कहां से पाया है, गोरी तूने जान को चुराया है।
1: गोरा गोरा

The Mighty Bookies की आवाज में ये गाना बस पेश की गई यूट्रेख्ट लाइट्स रेन का रहने वाला रजेश उदित ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। रजेश आपको भी शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। हालांकि हमें मालूम है कि आप सालों से रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी रेडियो SBS का साथ हमेशा देने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। अन हेलमोइडाख शुभ दिन पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड शहर की रहने वाली यानी महेश भी सालों से रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है। फिल्म का नाम किस्मत, काफी पुरानी फिल्म है, 1985 तक का फिल्म है। उसी फिल्म का एक गाना आशा और शमशाद बेगम की आवाज में मांग किया है उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती यानी महेश। तो चले मिलकर सुनते हैं।

किस्मत फिल्म का नाम शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई कजरा मोहब्बत वाला। उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती यानी महेश ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण बाप और बेटे का लाइव कमाल आप देखिए रोटरडम आहोई में। लाइव कॉन्सर्ट जो भी होने वाले है उदित नारायण और आदित्य नारायण का रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। अपना टिकट आप खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर आप जाकर टिकट को आप खरीद सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए भी आपको खबर किया जा रहा है कि कितना ढेर सा टिकट बिक चुका है उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट का। बस मिलकर देखेंगे सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई में उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट। ला रहा है रागा इवेंट्स, ला रहा है रागा इवेंट्स ये जबरदस्त कॉन्सर्ट। और आपको तो मालूम है रागा इवेंट्स का कॉन्सर्ट जो होते हैं हमेशा आउटवर्कोट होता है, तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए iStripTickets.com।

रोटरडम शहर के अंदर में भी हमारा प्रोग्राम हमेशा फॉलो कर रहे हैं प्रदीप। प्रदीप एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया है, चले ये गाना को सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप ये गाना को मांग किया है।

की आवाज में ये गाना पेश की गई रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप का मांगे हुए गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। हमारा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रदीप आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में 11 बजे में, मतलब होते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पर आ रहा है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे ये प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पेश किया जा रहा है और कभी कभी प्रोग्राम में आपको मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए। इस तरह से आज के प्रोग्राम में बहुत सी सुनने वालों तार किया है और अभी तक तार कर रहे हैं, ऐप कर रहे हैं गाना के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम ये रविवार की प्रोग्राम जो है 1 घंटा बढ़ाने वाले हैं, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम पेश करने वाले हैं ताकि और भी सुनने वालों प्रोग्राम में भाग ले सके। तो एक आखिरी गाना आम्स्टरडम शहर से पहले पहला मर्तबा स्टूडियो की ओर तार किया है फैसल आम्स्टरडम शहर के अंदर में भी प्रोग्राम को सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में सोचा चले हम भी तार करें, गाना मांग करें प्रोग्राम में, और मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म झुक गया आसमान फैसल का खास मांगी हुई गाना आम्स्टरडम शहर का रहने वाला है।

0: झुक गया आसमान फिल्म का गाना पेश की गए मोहम्मद रफी की आवाज में। एम्स्टर्डम शहर से फैसल तार किया और ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गए हैं। कल सोमवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर सुनते ही रहना पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जाएगी। और सभी सुनने वालों जो आज की प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, प्रोग्राम में गाना मांग किया, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम को सुने पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, उन सभी को भी शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ना होते तो किस तरह से हम ये प्रोग्राम को सजाते बनाते। हमेशा आप सभी जो साथ देते हैं। चलिए प्रोग्राम में रिक्लाम की ओर हम आपको ले चलते हैं। रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फकीर से इंफॉर्मेशन आपकी सेवा में पेश किया जाएगी। आपको तो मालूम है हमेशा न्यूज देश विदेश का समाचार आपके लिए पेश किया जा रहा है, मौसमी समाचार, और आपको खबर किया जा रहा है कि हॉलैंड देश के अंदर में कहां कहां पर लंबी ट्रैफिक होते हैं, यानी कि ANVBA के जरिए फरकेट से इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है। तो चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं रिक्लाम न्यूज और मौसमी समाचार, साथ ही साथ फरकेट से इंफॉर्मेशन की ओर।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

रोमांटिक रोमांटिक मैशअप गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। 13:04 स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव फनाउट एट मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड लाइव फनाउट एट हार्ट फॉर नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड ये है रेडियो SBS अल मीर दन 41 जार।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि इस वक्त सुपरमार्केटों को दवा इस वक्त खुला है और खुला रहेगा आज शाम 6 बजे तक। जब ये आप सामान खरीदना चाहेंगे सस्ती दामों में तो सुपरमार्केटों को दवा के पास में आप जरूर तस्वीर फरमाइए। प्रिंस बर्नार्ड लेन नंबर 54 यूट्रेख्ट जुइलन में जो है एक गाना जो एक सुनने वालों ने गुजारिश किया है आज की सुबह की प्रोग्राम में। कुमार सानू एन साधना सरगम एक बड़ी ही खूबसूरत गाना है यार भरी गीत सिर्फ रेडियो SBS पर।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। धीरे दाह का दिन है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी, 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम आप सुनते ही रहना, और वो भी शेरों का शेर के जरिए ग्लेन रामबाली बब्बा शेर, ग्लेन रामबाली के जरिए प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। बैठक गाना प्रोग्राम, और वो भी 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। चलिए प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना की ओर। अभी अभी एक सुनने वालों ने हमें ये गाना भी याद दिलाया है, ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स अंदर आते रहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS का प्रोग्राम लाइव फनाउटेड हार्ट फनेडलांत। हाँ, हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से अलमेर दम एनन फिर तक यार सुनने वालों ये प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। मदहोश दिल की धड़कन।

0: मदहोश दिल की धड़कन लता एन कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। अभी आपने सुना रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट की जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है, बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है, यही तो फायदा होता है जब भी आप रेडियो SBS के जरिए अपना रिक्लाम देंगे तो बार बार आपको खबर किया जा रहा है, हमारी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है क्या होने वाले हैं, कहां पर शो होगा, कहां पर कॉन्सर्ट होगा, कहां पर डांस पार्टी होगा और कहां पर सामान जो है सस्ते दामों में आप जाकर खरीद सकते हैं, या तो इंडिया भारत देश का कपड़े कहां पर आप जाकर खरीद सकते हैं। रिक्लाम जो है सस्ते दामों में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है, जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए रेडियो SBS से। लेकिन हम आपको याद दिलाने वाले थे कि 15 तारीख नवंबर रविवार का दिन जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाले हैं उदित नारायण और आदित्य नारायण का, तो जरूर आप जाकर अपना टिकट खरीदिए। iStreetTicketsPinCom वेबसाइट पर टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है और खुद आप देखेंगे उसी वेबसाइट पर कि कितना टिकट बिक चुका है। रागा इवेंट्स के जरिए ये कॉन्सर्ट लाया जा रहा है उदित नारायण प्रोग्राम में, और साथ में होगा अनुराधा पोटवल। द हेक फिल्म का नाम
1: जब से तुम्हें मैंने
0: द वॉइस ऑफ उदित नारायण।

तेरे नींदों में हो तुम। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में द हेग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं मेरा की ओर। काफी कॉम्प्लीमेंट्स अंदर आते रहते हैं तार द्वारा ऐप द्वारा। शुक्रिया धन्यवाद आप सभी के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। उदित नारायण और अलका होगा प्रोग्राम में। द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया 2002 में ये फिल्म रिलीज हुआ है।

मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई है, हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, वो ये नंबर है तो फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया। रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। 8 मिनट बाकी है 12 बजने में एक गाना और उसके बाद खबरें प्रोग्राम में पेश होगा। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं। उदित नारायण एंड साधना सरगम।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एंड कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03322666611।

इसकी गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

अदनान सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS की जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

पेश किया जाएगी टू रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में कंचन मैशअप आपके लिए पेश किया जा रहा है आज की लोकल गाने की खास प्रोग्राम में, जरूर आप सुनते ही रहना।

मिनट वेडिट हो चुका है रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उमर प्रोग्राम में होगा

और रेडियो SBS की जरिए सागर मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-2262

बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम। संजय जोधा प्रोग्राम में।

रेडियो SBS की जरिए साधना लीला और अपाचे वेडिया की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर अब आपको ले चलते हैं नीलम की आवाज में, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस में इसकी जरिए गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई फरमाई से हुआ इश्तेहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो वेस में इसकी जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में आपकी फरमाई से आपकी तमाम खबरें रिक्लाम जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में दविंदर सिंह और सविता सिंह

गाना बस पीछ की गए मैं भौरा तू है फूल। रेडियो SBS की जरिए कुछ लोकल गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रणधीर प्रोग्राम में होगा और रणधीर की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना।

रायन रायन के आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई मैं प्यार का दीवाना मिक्स अभी आपने सुना। एक आखिरी गाना इस प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है बैरी डमरी एंड मोटीमाला भोला सिंह की आवाज में।

0: लाइविंग कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अतिथिया नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्राचीन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: संडा 15 नवंबर संडा 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय आरटीएम स्टेज टू जनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia live in concert Udit.

सुंदर गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों एक गजल आज के इस दोपहर का प्रोग्राम में हम पेश करने वाले हैं जगदीत सिंह की आवाज में। इन दिनों ये गजल भी काफी हलचल मचाया हुआ है तो मैंने सोचा चले आपकी सेवा में हम पेश करें।

0: अब आईना पूछता है मुझसे,
1: किसके लिए भागे थे?
0: मैं चुप रहता हूँ,
1: क्योंकि जिनके लिए भागे थे
0: वो अपने रास्ते चले गए।

ये सुंदर गजल बस प्रोग्राम में पेश की गई, कमाते कमाते उम्र गुजर गई, खासतौर पर जगदीत सिंह की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आहिस्ता आहिस्ता हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होने पर आ रहा है। ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए प्रोग्राम अभी सुनते ही रहना।

0: सुन वालों, एक आखिरी गाना हमारा आज का प्रोग्राम से पेश होगा और उसी गाना के साथ मैं आप सभी सुन वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा। कल सुबह 7 बजे आप सभी सुन वालों से हम फिर मिलेंगे। अभी प्रोग्राम टेक ओवर लेगा ग्लेन रामबाली।
1: लव स्टोरी बिगन राइट देयर।
0: बब्बा शेर आते हैं अभी।
1: तुझे देखा तो ये जाना
0: लोग उनके वो
1: प्यार
0: कहते हैं कि अभी 3 बजे बब्बा शेर आएगा। शेरों का शेर ग्लेन रामबाली। सुन वालों, उनका प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम होगा। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। मिलेंगे आपसे कल सुबह ठीक 7 बजे।

दी ओपनिंग नंबर अभी आप सुने थे हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से, वो भी किशोर कुमार। किशोर कुमार के पास में के रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो

इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फरकेज फमासी, और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

तीन बजकर इस वक्त तीन मिनट गुजर रहा है, थ्री मिनट नौ बजे बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर राज्य SBS, और वो भी हर रविवार को शाम में तीन से छह बजे तक सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

एकदम कमाल सजनी बेमिसाल एंथोवर एंथोवर से हैंक महावीर का पसंद भी आप सुनते प्रोग्राम से

0: गोरिया से नैना लगेबे नचवा नचवाएबे गोरिया से नैना लगेबे सजना तो के नचवा नचवाएबे
1: राम रमेश सर के वास में

0: रविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में भी आप सुनते के पकावत हमार।
1: फूलों से तुम हंसना सीखो, भोरों से तुम गाना, सूरज की किरण।
0: अभी उदित राम के वास में सुनते रहना।

रॉबी उदितराम के वास में अभी आप सुन रहे थे के फूलों से हंसना सीखो। रॉबी गोगर के वास में सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: अनंत भजन के बाद में भी आप सुन रहे थे। 4:00 इस वक्त 7 मिनट गुजर रहा है।
1: अरे मान बनाई ना करे
0: सेफ मिनट एंड ओवर फिर बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। वैसे मालूम है कि फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए 24 घंटा लगातार अवतार कीजिए हर एक इन्फो के लिए 032-65-65-60 और साथ में स्टूडियो का तार का नंबर 032-62-66-11 आपको दिया जा रहा है।

0: शिवानंद गत्तू के पास में अभी आप सुन रहे प्रोग्राम से रविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में
1: वो चली समधिनिया
0: चली से बेया बेया रमोतर की पसंद सुन रहे ना।

0: समझ नहीं आ रमोतार की पसंद भी आप सुनते प्रोग्राम से
1: हरे धुविनिया तुझको क्या
0: राजू सिंह गुलाम के पास में
1: तो बता

के परदेसी पिया आ जाना कई इस जगह सर के वास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से और आपकी बात सुनते रहना रिबन रिबन पंचम के वास में।

जय कुमार नंदा कपसंत भी आप सुनते प्रोग्राम से कंचन कंचन के पास में सुनते रहना।

0: घुंघरू टूट गए, कंचन कंचन के आवाज में अभी आप सुनते प्रोग्राम से मोतीमाला भोला सिंह के आवाज में। के मतलब का इंसान है जग में,
1: जग में
0: मोतीमाला भोला सिंह के आवाज में।

0: शाम ढली
1: रविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में
0: सीटी बजाना छोड़ दे हरियाणा जाना छोड़
1: उर्दन से डिंपल की पसंद सुनते रहना।

Verlengde Hogestraat से राम महेश और साथ में किसला की पसंद अभी आप सुनते प्रोग्राम से रामदेव चैतु के पास में के हल्की हल्की चले पवन ब्राबंत ओस से हैंक एंड फ्रेंड्स का पसंद सुनते रहना आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम स्मार्ट

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फिर केस, इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में आरजे आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिमुजर ग्लेन। हमारी तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंजलि क्रमनाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंजलि क्रमनाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरडी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।